0: मरना चाहना है।
1: कौन?
0: मेरी छड। तू क्यों छाल मारन लग गया सी?
1: सब खत्म हो गया अंकल, मेरे सारे सपने टूट गए। IIT च एडमिशन भी नहीं होनी हुण, मेरी रैंक नहीं आई। आई हैव फेल्ड टुडे।
0: पर ये कोई एड्डी वड्डी गल तां नहीं।
1: हाँ, थोड़े लिए कोई वड्डी गल नहीं। तुसी कहना कदे स्कूल दी शक्ल वेखी होनी है, थोनू की पता एम्बिशंस की हुंदे ने, फेल होना की हुंदा है, हार जाना की हुंदा है।
0: हाँ, मैनू नहीं पता, पर मैं हुण रोटी खाण लग्गिया, ते रोटी खांदे होए मैं किसे नू मरदे नू नहीं देख सकदा। हाँ, उदों तक तेरे लिए मेरे कोल इक चीज़ है।